0: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजकेन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो
1: वेरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य

0: सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नई दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The 18th BRICS Summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung are the other heads of state who will attend the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and President of New Development Bank Dilma Rousseff are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The President of South Africa is set to arrive this morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi and Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to arrive later today. Prime Minister Narendra Modi will have a series of bilateral meetings on the sidelines of the summit. In view of the upcoming BRICS summit, Delhi Traffic Police has informed that traffic diversions and regulated movement will be in place across key routes in Delhi today from 2 p.m. to 8:30 p.m. During this period, Sardar Patel Marg, Teen Murti Marg, 30 January Marg, Rajesh Pilot Marg, Subramaniam Bharti Marg, Mathura Road, Motilal Nehru Marg, Dr. Zakir Hussain Marg, Africa Avenue Road, Shantipath, Janpath, Ashoka Road, Barakhamba Road, Niti Marg, Panchil Marg, Kamal Aturtak Marg, Press Enclave Road and Lala Lajpat Rai Marg, along with connecting roads, will be affected. Meanwhile, Delhi Metro has informed that all metro stations will remain open until further notice with regard to multiple queries received on the closure in view of the BRICS summit. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored

0: आकाशवाणी एफएम गोल खांटी सोना
1: प्रभातेर आलोए रांगा प्रभात बिना प्रभात बिना सुनछेन 100.1 एफएम गोल्डे प्रभात बिना 100.1 एफएम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिशकियान हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियासिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचव से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
1: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय

दो सुबह का मूड कुछ कुछ मोबाइल की बैटरी जैसा होता है, यानी सुबह सुबह फुल चार्ज्ड। बस फर्क इतना है कि मोबाइल को चाहिए चार्जर और हमें चाहिए एक अच्छी सोच, थोड़ी सी उम्मीद और चेहरे पर स्माइल, है ना। तो आज का दिन परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे खूबसूरत बनाने पर फोकस कीजिए। किसी को कुछ अच्छा कह दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए और अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकालने पर ध्यान दीजिए और हमारे लिए थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए, क्योंकि 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर आपकी स्माइल के लिए ही तो आते हैं हम आपसे मिलने हर रोज। और 7:11 पर ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात, ओनली ऑन 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड। और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

भाई ढूंढने का काम वाकई मुश्किल है, फिर चाहे वो खोया हुआ दिल हो या खोया हुआ सामान। और मजेदार बात जानते हैं क्या है? मजेदार बात ये है दोस्त कि वर्किंग डे में लगभग हर दूसरे हाउस होल्ड का सीन कुछ ऐसा होता है कि सुबह सुबह काम पर निकलने की जल्दबाजी में मोबाइल, पर्स, चाबी, चश्मा, रुमाल, बेल्ट और इसी तरह की छोटी छोटी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ों की ढूंढ मची होती है और फिर शोरगुल, बहसबाजी और ब्लेम गेम साथ में आता है। और जो बेचारा प्राणी घर पर रहता है, जो कि अक्सर लेडी ऑफ द हाउस होती है, उसकी अक्सर रेल बनी रहती है। लेकिन सोशल इंजीनियर्स का मानना है कि ऐसा बिहेवियर दिखाता है कि आप जीवन में कितने व्यवस्थित या अव्यवस्थित रहते हैं, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं या नहीं, और समय पर हर चीज़ करने की ओर आपका नज़रिया और आपका रुझान दोनों दिखाई पड़ते हैं। चलिए तो इशारा आप समझ ही गए हैं दोस्त, बस उस पर काम करना शुरू करना है आपको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं गोल्ड सुप्रभात में इस गोल्डन क्लासिक के साथ। फिल्म है 1962 में आई आरती, आवाजें आशा रफी की हैं, लिरिक्स मजरू के और म्यूजिक रोशन का है।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of

साथियों, हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि हम उसके साथ क्या करते हैं। और वैसे एक दिन की शुरुआत करने के लिए आपकी स्माइल, आपकी मुस्कान सबसे अच्छी शुरुआत हो सकती है, है ना। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर 7:25 हो गए हैं और आप ट्यून इन हैं इस वक्त अपने फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात में मेरे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा के साथ। और आज का मौसम कुछ धूप छाँव के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास और हवा की गति रहेगी करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। और आज बर्थ एनिवर्सरी है विनोबा भावे जी की और डेथ एनिवर्सरी है सुब्रमण्यम भारती जी की, जिनके बारे में हम बात करेंगे म्यूजिकल दिल्ली में। और आज के प्रोग्राम्स के बारे में भी आपको मैं बता दूं तो 8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल्ली का पहला सेगमेंट, जिसमें आपके साथ रहूंगी मैं, और 9:10 पर म्यूजिकल दिल्ली के दूसरे सेगमेंट में रेखा होंगी आपके साथ। 10:30 आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, 11:10 पर स्पॉन्सर प्रोग्राम मेरा वजूद, 11:25 पर प्रोग्राम तस्वीर में आज हम आपको हिमाचल प्रदेश में कसोल लेकर चलेंगे, 12:10 पर आप सुनेंगे एक कदम बुजुर्गों की ओर, 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में अभिनेता अभी भट्टाचार्य के बारे में बात करेंगे, और 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, 6:30 मार्केट मंत्रा, 8:10 पर मधुरिमा, 10:30 हर सिंगार और 11:40 पर गीत मेरे मन मीत। और फिलहाल एक और गीत आपके लिए और इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलती हूँ आपको 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली के पहले सेगमेंट में। आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक। और इस गाने के बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे।

0: हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म एंड लविंग वेलकम टू ऑल आवर ग्रेट लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड मुकेश, सिंस यू स्टार्टेड द शो बाय स्पीकिंग अबाउट द सिमिलैरिटी बिटवीन आंधी एंड एंगर, इफ आई मे से सो, सो आई लाइक टू एड हियर दैट एंगर इज अ फायर विद इन अस। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर वी फील इट, बट वेदर वी लेट इट डिस्ट्रॉय अस और यूज दिस एंगर टू क्रिएट चेंज।
0: बिल्कुल।
1: सो विद दिस अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी एंड थॉट प्रोसेस, लेट्स बिगिन द प्रोग्राम आज सवेरे राइट अवे।
0: जी हाँ, तो नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकन हिस्सा लेंगे। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली तथा सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे।
1: And adding to the details further, the BRICS Business Forum 2026 will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. The day-long event brings together over 1,000 corporate executives, trade ministers, financial leaders, global investors and industry innovators from member nations. It is being organized by the BRICS Business Council in partnership with leading APEX chambers, FICCI, CII and ASSOCHEM. This flagship international B2B economic summit serves as the official commercial precursor to the 18th BRICS Leaders Summit. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The President of South Africa is set to arrive this morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of

0: Abu Dhabi and Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to arrive later today. Prime Minister Narendra Modi will have a series of bilateral meetings on the sidelines of the summit. Our correspondent brings us more details.
1: BRICS has come a long way from a four-nation grouping to a significantly expanded platform with a wider global footprint. The journey began in 2006 when the BRIC grouping was formalized during a meeting of foreign ministers on the sidelines of the UN General Assembly in New York. The first BRIC summit was held in Yekaterinburg, Russia in June 2009. In 2010, the grouping welcomed South Africa, becoming BRICS. South Africa took part in its first BRIC summit in Sanya, China in April 2011. In January 2024, BRICS entered a new phase of expansion with Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and the UAE becoming full members. India assumed the BRICS chairship on the 1st of January this year, taking the lead for the fourth time. India had previously chaired BRICS in 2012, 2016 and 2021. A journey of expansion, a wider global voice and now India at the helm once again. Shagun Chopra for Aaj Savere.
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। मंत्रालय ने बताया कि यह कार्यक्रम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और इसके लिए 100% केंद्रीय धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
0: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said that under the proposed new Seed Act, farmers' rights are fully protected with no restrictions on traditional and farmers' seed varieties. He said this while chairing a consultation with leaders of farmer organizations on the proposed new Seed Act from across the country in New Delhi yesterday. Mr. Chauhan said that the existing Seed Act was enacted in 1966 and the Seeds Control Order came into force in 1980. He added that the framework is no longer adequate to address emerging challenges such as fake and substandard seeds and gaps in fixing responsibility.
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी।
0: TRAI has released the standards of quality of service, duration of advertisements in television channels, repealing regulations 2026 yesterday. These repeal the standards of quality of service, duration of advertisements in television channels regulations 2012, dated 14th May 2012, which prescribed a ceiling of 12 minutes of advertisements in a clock hour in broadcast of a program. These regulations were primarily intended to monitor and enforce the advertisement duration ceiling.
2: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार कर 20 लाख पेशेवरों को तैयार करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कल जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में कहा कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था में किए जा रहे सुधारों से फिल्म निर्माताओं को पायरेसी से बचाने में भी सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस उद्देश्य को आगे बढ़ाता है जिसमें उन्होंने वर्ष 2019 में फिल्म निर्माताओं से कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग और निर्माण का आह्वान किया था। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने जम्मू कश्मीर सरकार को फिल्म निर्माताओं और सिनेमा से जुड़े पेशेवरों को एक मंच पर लाने के लिए शुभकामनाएं दी।
0: And now let's take a peep in the world of sports. In cricket, India produced a brilliant all-round performance to thrash Bangladesh by 40 runs in the first semi-final of the Women's Asia Cup 2026 in Dubai last night. India's victory secured their place in the Women's Asia Cup 2026 final, with the second semi-final between Sri Lanka and Pakistan determining their opponents. Chasing a target of 150 runs, Bangladesh struggled to build momentum as India's bowlers kept the pressure on and made 109 for the loss of 7 wickets in the stipulated 20 overs.
2: आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी की साथ की अगली कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला से बातचीत प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम में बच्चों के साथ पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण पर उनके कार्यों पर चर्चा होगी।

0: बातचीत आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। इसे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले सरबजीत आप बताएं चेन्नई के क्या समाचार हैं आपके पास।
1: जी मुकेश।

0: days and hold meetings to boost trade and investment in the state. Top officials of the Industries Department and the Finance Department will have back-to-back discussions and sign a lot of MOUs. And what's the update that Mukesh, you are sharing with us?
1: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के समाचारों की। रेलवे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कोल्हापुर के छत्रपति शाहूजी महाराज टर्मिनस के बीच चार अतिरिक्त गणपति स्पेशल गाड़ियां चलाने की घोषणा की है। ये रेलगाड़ियां 12 और 14 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे मुंबई से प्रस्थान करेंगे और अगले दिन सवेरे 4:20 पर कोल्हापुर पहुंचेंगी। वापसी में रेलगाड़ियां 12 और 14 सितंबर को रात 12:05 पर कोल्हापुर से प्रस्थान करेंगे और उसी दिन दोपहर 1:30 बजे ये मुंबई पहुंचेंगी। पश्चिमी रेलवे ने भी दीपावली के दौरान विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। बृहन मुंबई महानगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने कल गणेश उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। गणेश उत्सव 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। उन्होंने शहर में कई प्राकृतिक विसर्जन स्थलों और कृत्रिम तालाबों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि विसर्जन जुलूसों को सुचारू रूप से संचालित करें और पर्याप्त नागरिक सुविधाएं प्रदान करें। और बृहन मुंबई महानगर पालिका ने शहर के 7 जलाशयों की संयुक्त क्षमता लगभग 96% तक भर जाने के बावजूद 10% पानी की कटौती जारी रखने का फैसला किया है। सितंबर में वर्षा की अनिश्चितता और आने वाले महीनों के लिए पानी बचाने की आवश्यकता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।
0: सो दीज वर ऑल इको फ्रेंडली न्यूज स्टोरीज मुकेश। सो एडिंग टू दिस बकेट, आई टू हैव एन अपडेट फ्रॉम बेंगलुरु। द बेंगलुरु ईस्ट सिटी कॉरपोरेशन हैज पुट इन प्लेस मेजर्स फॉर एन इको फ्रेंडली गणेशोत्सव, बैनिंग गणेश आइडल्स मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस, thermocol and chemical colors. Commissioner D.S. Ramesh said a single window system with ward-wise nodal officers has been established to expedite permissions for installing idols, with applications to be processed within 24 hours in coordination with the police, BESCOM and fire and emergency services. Temporary immersion ponds and mobile tanks will be provided to prevent pollution of lakes and water bodies. So Mukesh, indeed, you know, these kind of initiatives are highly applaudable.
1: Bilkul.
0: This talks about festivity with conservation of environment. Jee. So moving on further, what update do you have for
1: us? कोलकाता की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कल एक संशोधन विधेयक पारित किया। इसके अंतर्गत पहली बार विश्वविद्यालय कर्मचारियों के एक संस्थान से दूसरे संस्थान में तबादलों के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर विश्वविद्यालय कर्मचारियों का तबादला कर सकते हैं। तबादला किए गए कर्मचारियों के पास अपने मूल विश्वविद्यालय में स्थायी नियुक्ति बनाए रखने या नए विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से शामिल होने का भी विकल्प होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधेयक के बारे में कहा कि सरकार का उद्देश्य नए कर्म और कम कर्मचारियों वाले विश्वविद्यालयों में अनुभवी शिक्षकों और कर्मचारियों की तैनाती करके उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। विधानसभा में विधेयक के पक्ष में 171 वोट और विपक्ष में 15 वोट पड़ने के बाद इसे पारित कर दिया गया।
0: So, though Mukesh, we've already spoken about the news from Chennai, but I'm taking the liberty to come back to it because there's a very interesting piece of news here that, you know, dahi or yogurt is a part of our staple daily Indian diet. And Milky Mist Dairy Food has commissioned a new Skyr and Greek yogurt manufacturing facility at its integrated plant in Perundurai with an investment of around 40 crore rupees. The facility, equipped with ultra-filtration technology, has a processing capacity of up to 150 tons a day, significantly higher than the company's earlier capacity of around 20 tons a day, commissioned in 2022. The company was the first in India to introduce ultra-filtration technology for manufacturing Skyr and Greek yogurt way back in 2022. And let's move on to the news from Hyderabad. The three-day nomination jury process for the 14th CMS Vatavaran International Environment and Wildlife Film Festival concluded yesterday at the Instructional Media Center of Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad. Held from 8 to 10 September in partnership with IMC, the evaluation process finalized 58 nominated films out of over 900 entries entries received from 82 countries. The event was inaugurated by MANUU Vice Chancellor Professor Saeed Anul Hassan alongside

0: Alongside Dr. Vasant Rao, Director General of the Center of Media Studies, and IMC Director, Mr. Rizwan Ahmed. And Mukesh, I am eagerly waiting to hear from you. What's the update from Delhi now?
1: बिल्कुल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल से, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोक रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय तथा अमृत उद्यान 11 से 13 सितंबर तक आम जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि कल राष्ट्रपति भवन प्रांगण में गार्ड परिवर्तन समारोह भी आयोजित नहीं होगा और दिल्ली विश्वविद्यालय के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने कल विधानसभा का दौरा किया। इनमें किरोड़ीमल कॉलेज, सुखदेव कॉलेज, लॉ सेंटर 1 और 2 तथा शहीद भगत सिंह कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों को लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों, सार्वजनिक जीवन तथा युवाओं की जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर विधानसभा अध्यक्ष से संवाद का अवसर मिला। दिल्ली सरकार राज्य आपदा मोचन बल SDRF का गठन करेगी। इससे आपदा की स्थिति में प्रशिक्षित और विशेषज्ञ बल को घटना स्थल पर शीघ्र पहुंचने, राहत तथा बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा जान माल के नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी। और दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी SCL दास को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। और दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे, मुकेश कुमार और सरबजीत कौर के साथ। और आज सवेरे में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले दिल्ली का मौसम बताएं।
0: जी,
1: तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान में आम तौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा भी हो सकती है और आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता का रुख करें तो कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई की बात करें तो वहां भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
0: वेल मुकेश, चेन्नई विल हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर्स विल बी अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द मैक्सिमम इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन अगेन। मिनिमम टेम्परेचर अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस, maximum up to 31 degrees Celsius. Hyderabad will also have partly cloudy sky with possibility of rain, thunderstorm or dust storm. The minimum temperature will be around 25 degrees Celsius. Maximum may go up to 33 degrees Celsius.
1: और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 11 सितंबर है तो आज ही के दिन सबसे पहली घटना क्या हुई थी?
0: Well, Mukesh, before we start, you know, with the list of events that happened on this day when we flip the pages of history, today is Van Shaheed Divas. Let us, you know, share this also piece of information with our listeners that All India Forest Officers Federation, AIFOF, is scheduled to observe Van Shaheed Divas on this day to remember the sacrifices of the forest workers who laid down their lives to protect the forest. This day is chosen to commemorate the Khejralli massacre of the year 1730, where 360 Bishnois were killed for protecting trees. And now let's talk about the last, almost the second last segment rather of this program, that is, which we called This Day in History. And Mukesh, 11th September from a breakthrough in communication to a message of universal brotherhood, and later one of the darkest days in modern history.

0: September 11 indeed has witnessed moments that changed the world. 1853, on this day, a pioneering electric telegraph line was established in San Francisco, connecting the Merchants Exchange with Point Lobos, marking an important step in the evolution of long-distance communication.
1: और तकनीकी प्रगति से अब रुख करते हैं उस ऐतिहासिक क्षण का जब भारत का आध्यात्मिक संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा था. जी हां, हम बात कर रहे हैं वर्ष 1893 की, जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से शुरू हुए उनके संबोधन ने धार्मिक सद्भाव और विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया.
2: And brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects.
0: 13 years later, another important chapter in India's history of non-violent resistance began overseas. Yes, 11 September 1906, Mahatma Gandhi led a historic mass meeting in Johannesburg where the Indian community resolved to peacefully resist the discriminatory Asiatic Registration Ordinance. This movement became the foundation of the Satyagraha movement. And 1973, on this day, a military coup overthrew President Salvador Allende, marking the beginning of Augusto Pinochet's rule.
1: और राजनीतिक घटनाओं से अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल और सहयोग की दुनिया की ओर और बात करते हैं वर्ष 1998 की. आज ही के दिन इस वर्ष 16वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन कुआलालंपुर में हुआ था और ये एशिया में आयोजित होने वाले पहले राष्ट्रमंडल खेल थे. लेकिन 21वीं सदी में 11 सितंबर की पहचान एक बेहद दुखद और भयावह घटना से जुड़ गई. जी हां, 2001 में अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया. चार अपहृत विमानों के जरिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन को निशाना बनाया गया, जबकि एक विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ.
0: 2024, on this day, the National Fisheries Digital Platform, NFDP, was launched on September 11 by the Department of Fisheries under the Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Saha Yojana.
1: और अब हम याद कर रहे हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि. इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं महाकवि महादेवी वर्मा को. महादेवी वर्मा केवल एक नाम नहीं, हिंदी साहित्य की वो रोशनी थी जिसने अपनी कविताओं में असंख्य दिलों को छुआ, जिन्हें प्यार से आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविताओं में प्रेम, पीड़ा और आध्यात्मिकता की वही गहराई झलकती है जो मीरा की भक्ति में थी. 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी का बचपन साहित्य और संस्कारों की छाओं में बीता. पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एक प्रगतिशील विचारधारा के थे तो माँ हेमरानी देवी धार्मिक थी और संस्कृत तथा हिंदी की विदुषी थी. यही कारण था कि महादेवी के मन में बचपन से ही शब्दों की महक बस गई. इंदौर के मिशन स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत करने वाली उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला सीखी, लेकिन उनके दिल को जो सबसे ज्यादा भाया वो था साहित्य का संसार. माँ ने उनकी इस रुचि को हमेशा प्रोत्साहित किया और यही सहारा आगे चलकर उन्हें साहित्य की बुलंदियों तक ले गया. और उनकी कविता की कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाते हैं. चिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक के डोरे तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना.
0: And Mukesh, I'd like to add here that the great Mahadevi Verma was, you know, also known as the Saraswati in the vast temple of Hindi literature, and she was also trained in music. Her compositions are noted for their expressive language and stylistic refinement.
1: और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि गजानन माधव मुक्तबोध को.

0: मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की स्वातंत्र उत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व थे। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी थे और समीक्षक भी। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है और उनकी एक कविता, मैं उनका ही होता जिनसे मैंने रूप भाव पाए हैं, वे मेरे ही ये बंदे हैं जो मर्यादाएं लाए हैं, मेरे शब्द भाव उनके हैं, मेरे पैर और पथ मेरा, मेरे अंत और अथ मेरा, किंतु ऐसे चाव उनके हैं, मैं ऊंचा होता चलता हूँ उनके ओछेपन से गिर गिर, उनके छिछलेपन से खुद खुद मैं गहरा होता चलता हूँ।
1: Well, the next personality in our list is Subramaniam Bharti, the celebrated Tamil poet, journalist and independence activist. Known for patriotic poetry, Subramaniam Bharti was also known as a social reformer, women's emancipation champion, and he vociferously opposed to caste discrimination.
0: जी हाँ, इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। सुब्रमण्य भारती एक जुझारू शिक्षक, देशप्रेमी और महान कवि थे और आपकी देशप्रेम की कविताएं इतनी श्रेष्ठ हैं कि आपको भारती उपनाम से ही पुकारा जाने लगा। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्य भारती ऐसे साहित्यकार थे जो सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे, जबकि उनके रचनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में आम लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। ये कवियों में से थे एक थे जिनकी पकड़ हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं पर थी, पर तमिल उनके लिए सबसे प्रिय और मीठी भाषा थी। उनका गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार था।
1: द ग्रेट सुब्रमण्य भारती equality, women's education and social justice.
0: और अब हम याद कर रहे हैं आचार्य विनोबा भावे को। आज उनकी जयंती है। 11 सितंबर को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के गागोदा गांव के एक धर्मपरायण चित पावन ब्राह्मण परिवार में विनोबा भावे का जन्म हुआ। भूदान आंदोलन के माध्यम से आचार्य विनोबा भावे ने देश के वंचित भूमिहीन वर्ग को उनके अधिकार दिलाए। समानता की एक ऐसी संकल्पना रची जिसमें भूमिपतियों के निर्धन जन की चिंता की और उनके हित में अपनी भूमिका दान किया। अपने संकल्प के लिए वे हजारों मील पैदल चले। सर्दी में, गर्मियों में, वर्षा में, धूप में सेवा के बल पर उन्होंने करोड़ों लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाया। उनकी प्रेरणा से लाखों एकड़ भूमिहीन को दान दी गई।
1: In fact, Mukesh, the great Vinoba Bhave was a close follower of Mahatma Gandhi and he became an important leader of the Sarvodaya movement. Vinoba Bhave promoted Gramdan, village level voluntary sharing of land and resources, and it's important to mention here that he was the first individual recipient of the Bharat Ratna and he received it posthumously in the year 1983.
0: और आज ही भारत के महान और ख्याति प्राप्त क्रिकेटर नानक अमरनाथ भारद्वाज की जयंती है। उन्हें हम लाला अमरनाथ के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक लाने का गौरव इन्हें ही प्राप्त है।
1: वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग टूडे द ग्रेट कराईकुडी मनी, अ रिनाउंड इंडियन मृदंगम प्लेयर एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्कनिस्ट इन कर्नाटक म्यूजिक।

0: Listeners, today is the birth anniversary of Carl Zeiss, a German scientific instrument maker, optician and businessman. It is pertinent to note that in the year 1846, Carl Zeiss founded his workshop, which is still in business, in Zeiss.
1: और अब आज जो सांस्कृतिक गतिविधियां होने वाली हैं उनके बारे में श्रोताओं को बता दें तो आज नई दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे, शाम 4:30 बजे और शाम 7:30 बजे से फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जैनत डांस ग्रुप की ब्रॉडवे शैली का थिएटर प्रोडक्शन कृष्ण कथा प्रस्तुत की जाएगी। आज ही नई दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में शाम 7 बजे से ब्लैंक कैनवास में ध्रुपद इंडिया फाउंडेशन के स्वर्णापर्ण संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा और नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में शाम 7 बजे से द थिएटर में सोसाइटी फॉर एक्शन थ्रू म्यूजिक की ओर से भारतीय शास्त्रीय संगीत की शाम आयोजित की जाएगी और नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ही शाम 7 बजे से स्टीन ऑडिटोरियम में अनीता गुहा की शिष्या प्रियंका रघुरामन पुनरागम नामक एक भरतनाट्यम

0: की प्रस्तुति होगी। तो घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए। तो मुकेश कुमार और सरबजीत कौर को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
1: थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड होप यू एंजॉयड टुडेज आज सवेरे। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

0: नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो

0: ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
1: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
1: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्योरा हमारे संवाददाता से।
2: चार दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की

0: वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
1: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनम थिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनम थिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और public पर @airnewsalerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है। लोकसत्ता लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे।

0: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। एक रिपोर्ट।
1: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 और अंडर 21 वर्ग के खिलाड़ियों के लिए होगी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के इस सम्मेलन की तैयारियां अंतिम रूप में हैं। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।
1: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2000

0: 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन के इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य सेवाएं बहाल रहेंगी। ब्रिक्स व्यापार मंच का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। इस एक दिन के कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबार मंत्री क्षेत्र के प्रतिनिधि भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। एक बयान में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद यह बयान आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजेक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका मुख्य कारण सेवाएं और निर्यात में हुई वृद्धि है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 की जून की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ कल हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. The 18th BRICS Summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and sustainability. World leaders, including Russian

0: का प्रस्ताव रखा। देश महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियासिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जू जियासी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राष्ट्रपति पुतिन का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वहीं ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्वकर्ता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के सहयोग हो रहा है। इस सम्मेलन के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। ओवल फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण संपन्न हो रहा है और जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता के पास।
2: 4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को उद्घाटित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर अध्यक्ष सुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने एजेंट एआई टोकनाइजेशन सत्र को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक और प्रमुख आधार बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजिक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। ये $107.75 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। पिछले एक सप्ताह में ब्रेंट क्रूड की कीमत में 12% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष की अवधि और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें कितने समय तक बनी रहती हैं, ये भारत की आर्थिक स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में सक्रिय रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में

0: प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
1: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: और इस समय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व्यापार मंच को भारत मंडपम में संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: With non-tariff measures imposing higher export costs, in fact, much more than the tariffs themselves, 40% of the countries, we need to make market access easier, smoother. I urge BRICS member states and partner countries to open their markets while working together to simplify regulatory procedures and facilitate faster clearance of consignments.
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भागीदार देशों का वो स्वागत करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत मलेशिया की रॉयल मलेशिया नेवी के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण में शामिल होगा। भारतीय नौसेना ने बताया कि इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र में पेशेवर गतिविधियां शामिल होंगी, जिनका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल और संचालन सहयोग को बेहतर बनाना है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में एक अमरीकी मानव रहित पनडुब्बी को निशाना बनाया है। उसने अमरीका की इस कार्रवाई को आक्रामक बताया। IRGC ने कहा है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर अमरीकी सेना की मानव रहित पनडुब्बी सेल ड्रोन को जब्त कर लिया है। उसने ये भी दोहराया कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद है और ईरान के नियंत्रण में है, और उन्होंने चेतावनी दी है कि जलमार्ग में किसी भी शत्रुतापूर्ण उपस्थिति को निशाना बनाया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता महिला सिंगल में अरना सबलिंगा महिला ने जेका पेगुला को और अन्ना ने कोको सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को सब प्रमुख इंजन बताया। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के उच्चतम स्तर 108.77 अमेरिकी ट्रंप जाने के बाद F&B कर्मचारी का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स व्यापार नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास लगातार जारी हैं।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: एक दिवसीय कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधिकर्ता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसओचैम के सहयोग से हो रहा है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में

0: 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। एक रिपोर्ट।
1: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति पेजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवु ओजुकवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। विद्युत तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल 14 से 16 सितंबर तक अमेरिका के ह्यूस्टन में होने वाली G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। अमेरिका की G20 अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में G20 देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, किफायती ऊर्जा, अवसंरचना के लिए विकास और मजबूत ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi this afternoon. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest. The Russia-Ukraine conflict, the situation in West Asia, trade relations and energy cooperation are expected to come up for discussions between the two leaders. President Vladimir Putin arrived in the national capital in the early hours today to attend the BRICS summit, which begins tomorrow. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. President Pezeshkian is scheduled to arrive in New Delhi this afternoon. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. Regional developments are expected to be among the key issues discussed by the two leaders. Prime Minister Modi is also scheduled to meet United Nations Secretary General Antonio Guterres during his engagements in national capital. Prime Minister Modi, in a social media post today, said that over the next few days, leaders from around the world will gather for the BRICS summit. Mr. Modi expressed confidence that the summit will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as a guiding objective. South Africa.

लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

100.1 FM गोल्ड पर अगर आज हम बात करें कि आज हम लेकर आए हैं प्रबोध चंद्र को, तो शायद आपको थोड़ा सा हैरत अंगेज होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मन्ना देख को आज हम लेकर आए हैं, वो हैं आज के हमारे महफिल की शान, और जिस महफिल का नाम है लो आ गई उनकी याद। आपको बता दें कि हमारे स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि 11:20:26 और पॉपी है आपके साथ। आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड पर कार्यक्रम का नाम लो आ गई उनकी याद, और आज जिनकी यादों को हम लेकर आए हैं वो हैं मन्ना दी।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात. आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद. लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर. लो आ गई उनकी याद. लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर.
2: FM गोल्ड पर आज हम लेकर आए हैं मशहूर पार्श्व गायक जिनका नाम है मन्ना दे, और उन्हीं के गीतों को लेकर उन्हें हम आज याद कर रहे हैं. वैसे बता दूं कि उनका जन्म 1 मई यानी कि 1 मई 1919 1919 में कोलकाता में हुआ था. पिता का नाम पूर्ण चंद्र दे और माँ महामाया दे. उनके चाचा कृष्ण चंद्र दे उस समय के मशहूर गायक और संगीत निर्देशक हुआ करते थे, और उन्होंने ही उनका नाम रखा था मन्ना. पढ़ाई एक नामचीन कॉलेज से हुई कोलकाता के, और बचपन से ही स्कूल में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में वो हिस्सा लेते थे. संगीत की जो पहली शिक्षा थी वो चाचा कृष्णचंद्र दे से ही उन्हें मिली थी, लेकिन आगे चलकर उस्ताद दाबिर खान, उस्ताद अमन अली खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से उन्होंने हिंदी क्लासिकल सीखा. बनना तो चाहते थे बैरिस्टर, लेकिन चाचा ने पता नहीं जिंदगी के रुख को ही मोड़ दिया और उन्होंने संगीत से ही अपना करियर की शुरुआत की, यानी कि संगीत को ही प्राथमिकता दी और संगीत ही उनकी जिंदगी का सार बना.

सन 1942 में चाचा के साथ चाचा का हाथ पकड़कर मुंबई आए। शुरू में उनके असिस्टेंट रहे और फिर एसडी बर्मन के असिस्टेंट बने। पहला गाना सन 1943 में फिल्म राम राज्य में गई तू गई और उसी साल फिल्म तमन्ना में सुरैया के साथ उन्होंने ड्यूएट गाया। पहला सोलो हिट सन 1950 में फिल्म मशाल का ऊपर गगन विशाल एसडी बर्मन ने कंपोज किया था और यहीं से उनकी किस्मत का जो ताला था वो खुल गया। उनका गोल्डन पीरियड अगर कहीं तो माना जाता है सन 1953 से लेकर सन 1976 तक। सिर्फ सन 1957 में उन्होंने 95 हिंदी गाने रिकॉर्ड किए थे। ये थी मन्ना दे की खासियत। उनकी शैली जो थी वो बिल्कुल अलग थी, उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन पहले उसके पहले एक और खूबसूरत गीत सुनाएंगे। ये गीत मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा।

अजीब सी शैली थी उनकी। जी हाँ दोस्तों, उनका जो स्टाइल था वो बिल्कुल हर गायक से जुदा था। कहा जाता है उन्हें वर्सटाइल सिंगर, इसलिए क्योंकि न केवल क्लासिक, न केवल रोमांटिक, बल्कि मस्ती भरे, कवाली, दोस्ती के एंथम, फिलोसॉफिकल, ऐसा कौन सा क्षेत्र है संगीत का जो उनसे अछूता है। जी हाँ, अगर क्लासिकल की बात करें तो ये जो दो गीत मैंने बैक टू बैक आपको सुनाया, पूछो ना कैसे मैंने और लगा चुनरी में दाग।

बेमिसाल है। रोमांटिक गीत में प्यार हुआ, इकरार हुआ, आज और सनम, मधुर चांदनी में हम। मस्ती भरे गीत अगर बात करें तो ये एक चतुरनार पड़ोसन फिल्म का, चुनरी संभाल गोरी और आपको जिद्दी का वो गीत भी याद होगा, प्यार की आग में तन बदन जल गया। ये सब जो गीत हैं ये बेमिसाल गीत हैं, ये एक ऐसे गीत का एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे कोई जा नहीं सकता। कव्वाली की अगर बात करें तो

0: व्यापकता थी, इतना उनमें वो कहते हैं ना जज्बातों से भरा एक दिल था, और वही दिल उनके अल्फाजों से, उनके गीतों के माध्यम से निकल आता था। उन्होंने 3,500 से ज़्यादा गीत गाए, 14 भाषाओं में गाया, हिंदी, बंगाली, आसमीज, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी, पंजाबी, छत्तीसगढ़ी, बांग्ला। और बांग्ला में आपका वो गीत तो याद ही होगा, कॉफ़ी हाउसेर शे आट डाटा। मतलब मुझे जब उनकी मैं बात करती हूँ तो मुझे एक अजीब सा एक शख्स मेरे जहन में आते हैं, मतलब वो उन्हें छुआ नहीं जा सकता। कहते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट। उन्होंने 186 से ज़्यादा म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, SD बर्मन, RD बर्मन, शंकर जयकिशन, सलील चौधरी, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा कोई म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं था पूरे हिंदुस्तान में। ये तो मैंने सिर्फ हिंदी भाषा से बताया, लेकिन ऐसा कोई भी डायरेक्टर नहीं था जिन्होंने उस समय मन्ना डे के साथ काम नहीं किया। आइए सुनते हैं एक बड़ा ही कॉमिक सॉन्ग जिसे मैंने लिया है फिल्म पगला कहीं का से, और मुझे उम्मीद है कि ये गीत मन्ना डे को छोड़कर कोई और इस गीत के साथ इंसाफ कर ही नहीं सकता था।
1: क्यों मारा? मेरी भैंस को

तुम मत नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं। एक तारा मेरे भैंस को डंडा।

मन्ना देखो, एक घंटे के समय में बांधे रखना मेरे लिए तो संभव नहीं है। हाँ, मेरी कोशिश थी कि आपको पूरी की पूरी जानकारी दूं और आपको बताना चाहूंगी कि सन 1971 में उन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, सन 2005 में पद्म भूषण से और 2007 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया। और अब आपको उस गीत को सुनाती हूँ जिस गीत के लिए उन्हें सन 1969 में फिल्म मेरे हुजूर का ये गीत जो मैं सुनाने जा रही हूँ उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड बेस्ट मेल प्लेबैक का अवार्ड मिला। और साथ ही बंगाली फिल्म निशी पौद्दो में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला सन 1971 में। तो आइए उस गीत के साथ जिस गीत से उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, यानी कि पहचान तो थी ही, पुरस्कार दिया गया, उस गीत को सुनते हैं। मेरे हुजूर का वो खूबसूरत गीत जो कि पूरी तरह से क्लासिकल बेस्ड है, उस गीत को सुनाते हुए आपसे अलविदा कहते हैं। फिर मुलाकात होगी आपके साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवु ओजुफू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अपनी आर्थिक

0: व्यक्ति को अपने लोगों के लिए रोजगार, धन और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग की व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,352 पर रहा। एशिया कप महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। कल भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. The two-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Ahead of the BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi this afternoon. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest, the Russia-Ukraine conflict, the situation in West Asia, trade relations and energy cooperation are expected to come up for discussion between the two leaders. President Vladimir Putin arrived in the national capital in the early hours today to attend the BRICS summit. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. The Prime Minister is also scheduled to meet United Nations Secretary General Antonio Guterres during his engagements in the national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships.

0: इकोनॉमिक एक्टिविटी,
1: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता है।
2: इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स टुडे रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 1/4।
4: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
2: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 74,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. The two-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Ahead of the BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi this afternoon. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. Prime Minister Modi is also scheduled to meet United Nations Secretary General Antonio Guterres during his engagements in the national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships. Addressing the BRICS Business Forum in New Delhi this morning, Dr. Jaishankar said the summit is taking place at a time when the global political and economic order is undergoing significant changes.
0: Today's forum brings together a much wider set of enterprises and sectors and provides a space to examine not only commercial opportunities but also the conditions that enable them. This wider canvas is reflected in the forum's agenda. Supply chain connectivity and trade facilitation have emerged to be crucial, but so do building robust services, agriculture and agri-technology, digital delivery, MSMEs, startups and women-led enterprises.
5: Union, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal in his address called upon BRICS nations to work together to translate their economic strengths into jobs, wealth and prosperity.

0: Several locations in Patna, Munger, Bhagalpur and Kahalgaon, while the Kosi is above mark at Baltara in Khagadia and Kursela. The Punpun River at Shripalpur in Patna is receding by around 2 cm every hour, bringing relief to people in low-lying areas. Nidhishree for Akashvani News, Patna.
1: In sports, in the Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team will take on Malaysia in the semi-final at Mochi in China this afternoon. The match will begin at 2:15 p.m. Indian Standard Time. In U.S. Open tennis, defending champion Aryna Sabalenka and second seed Elena Rybakina have set up women's singles title clash. Second seed Elena Rybakina defeated fourth seeded Coco Gauff in the second semi-final in New York. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In Men's Junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमेरिकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में अरिना सबालेंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष पश्चिम एशिया संकट व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम

0: एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेग्वू ओजुक्वू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ. जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन से भी मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही।
4: For BRICS particularly, higher economic activity.
5: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
4: and transparent trade and investment.
1: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
4: This year is a milestone.
5: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
6: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री

0: एन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
2: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के पालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आर्यना सबालेंका से

होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज चार महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
2: फॉर ब्रिक्स पर्टिकुलरली हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी,
1: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता है।
0: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी आज नई दिल्ली में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री देनिस मंतोरोव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग को और मजबूत तथा व्यापक बनाने के उपायों पर चर्चा की। इस बीच प्रधानमंत्री आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 2 दिन की भारत नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शनी में भारत के 37 डीपटेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं जो ब्रिक्स सम्मेलन के विषय के अनुरूप हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये आयोजन कारोबारी संपर्क, प्रौद्योगिकी साझेदारी, निवेश संबंधी चर्चाओं, व्यापारिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच के अवसर प्रदान करेगा। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन इसके सभी रूपों के खिलाफ भारत का संकल्प और विरोध अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने देश और विदेशों में करीब 12,000 तमिल वाद विवाद कार्यक्रमों का संचालन किया। साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। अमरीकी ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन आरेना सबालिंका से होगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज रात जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला रूस के कारेन खाचानोव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में 2 अमरीकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Bilateral talks are underway between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin at Bharat Mandapam in New Delhi. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest, the Russia-Ukraine conflict, the situation in West Asia, trade relations and energy cooperation are expected to come up for discussions between the two leaders. President Putin arrived in the national capital in the early hours today to attend the BRICS summit, which begins tomorrow. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. Regional developments are expected to be among the key issues discussed by the two leaders. Prime Minister Modi is also scheduled to meet the UN Secretary General Antonio Guterres during his engagements in the national capital. Prime Minister Narendra Modi has expressed confidence that the BRICS conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. Our correspondent reports the two-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE.
3: The theme of India Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iranian President Masoud Pezeshkian and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will also participate. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit. The summit will get underway tomorrow with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. With Suparna Saikia, this is Ankit Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: BRICS member countries have expressed serious concern over the unilateral imposition of trade and finance-related measures, including tariffs and non-tariff barriers. They said that such actions distort trade and are inconsistent with the World Trade Organization rules. They reaffirmed support for an open, transparent, and rules-based multilateral trading system with the WTO at its core. The member countries of the grouping stated this in a joint statement issued following the conclusion of the final meeting of BRICS finance ministers and central bank governors in Mumbai yesterday under India's 2026 BRICS chairship. Highlighting the challenges confronting the global economy, the ministers and central bank governors said risks remain elevated amid geopolitical tensions, trade fragmentation, protectionism, policy uncertainty, fiscal and inflationary pressures, rising debt and financial vulnerabilities. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today welcomed his Brazilian counterpart Mauro Vieira in New Delhi ahead of the BRICS Summit 2026. In a social media post, Dr. Jayashankar said the two leaders discussed bilateral relations, including ways to enhance cooperation in trade and investment, defense, energy, agriculture and space. The two ministers also exchanged views on the current geopolitical situation. Dr. Jayashankar also met his Uruguayan counterpart Mario Lubetkin. India has reiterated its unwavering resolve to combat terrorism on the 25th anniversary of the horrific 9/11 attacks in the US. Prime Minister Narendra Modi has said that while the threat of terrorism continues to evolve, India's resolve and opposition to terrorism in all its forms and manifestations remain unwavering. On the 25th anniversary of the horrific attacks, Mr. Modi said in a social media post today that terrorism has claimed countless lives around the world. In Junior Asia Cup hockey, the first semi-final matches

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने इनोप्रोम प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। श्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन की सभी तैयारियां जोर शोर से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। ब्रिक्स देशों के नेता सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के गहन तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह समूह सदस्य देशों को अपने अनुभवों और नीतियों की तुलना करने, ठोस व्यवस्थाओं को मजबूत करने और नए अवसर तलाशने का मंच प्रदान करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी आज नई दिल्ली में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री देनिस मेदुरोव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग को और मजबूत तथा व्यापक बनाने के उपायों पर चर्चा की। वित्तीय सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। भारत ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2 से 3 दिन तक बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: जी हाँ दोस्तों, चाय की खुशबू और हमारी यादों का साया आप पे बरकरार है। दोस्तों खुदा कसम, आज फिर से मौसम ने जो रंग जमाया है वो लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल और बहुत ही खूबसूरत शाम मुबारक हो। मैं आज रिंकू आपका स्वागत करती हूँ 100.1 FM गोल खरा सोना पे चाय और क्लासिक्स का शो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस पसंदीदा म्यूजिकल शो में। और जब आप दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम की ढलती हुई इस थके हारी बातों पे रेडियो पे कान लगाकर सुनते हैं तो आपका दिल

फिर से मौसम ने जो रंग जमाया है वो लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल और बहुत ही खूबसूरत शाम मुबारक हो। मैं आज रिंकू आपका स्वागत करती हूँ 100.1 FM गोल खरस सोना पे चाय और क्लासिक्स का शो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस पसंदीदा म्यूजिकल शो में। और जब आप दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम की ढलती हुई इस थके हारी बातों पे रेडियो पे कान लगाकर सुनते हैं तो आपका दिल

फिर से मौसम ने जो रंग जमाया है वो लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल और बहुत ही खूबसूरत शाम मुबारक हो। मैं आज रिंकू आपका स्वागत करती हूँ 100.1 FM गोल खरस सोना पे चाय और क्लासिक्स का शो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस पसंदीदा म्यूजिकल शो में। और जब आप दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम की ढलती हुई इस थके हारी बातों पे रेडियो पे कान लगाकर सुनते हैं तो आपका दिल

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये गीत, और मुझे यकीन है कि आपका जो सुकून है वो इस गीतों के माध्यम से पूरा बरकरार है, क्योंकि आपका दिल और दिमाग दोनों एक जगह पर, एक ही जगह पे, यानी कि 100.1 एफएम गोल्ड में रिंकू के साथ बैठा हुआ है। वैसे हाथ में आपके चाय का गर्मा गर्म प्याला तो जरूर होगा, और कानों में हमारे गुजरे जमाने के इन हसीन गायिकाओं और गायक के सुर गूंज रहे हैं। तो इसी जादुई लम्हे में हम आपको क्या बताएं कि मोहब्बत का एहसास, उसे समेट कर आज गीतों का हम गुलदस्ता सजा कर लाए हैं। दोस्तों आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत फिल्म अनामिका से।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म अंदाज से, ये गीत आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज से। वैसे तो गीत के बोल हर्षद जयपुरी ने लिखे हैं और संगीत सजाया था शंकर जयकिशन ने। वैसे आप जो गीत सुन रहे हैं, वैसे महफिलों की खत्म होने के ऐसे तो नाम नहीं लेंगे, मगर दोस्तों ये यादों का सिलसिला वैसे ही जारी रहेगा जैसे अब तक था। चाय का ये कड़क स्वाद और गीतों का नशा सारी रात हमारे साथ यूं ही बरकरार रहे यही आशा करते हैं, लेकिन समय की कुछ पाबंदियां हैं। वैसे हमारे शो कुछ ही मिनटों और कुछ घंटों का ही शो होता है। वैसे रफी, मुकेश और भी जो लता मंगेशकर, आशा भोसले के साथ सुमन कल्याणपुरी और अनेक ऐसे गीतकार हैं जिनको हम सुनते आए हैं और अपने दिन सजाते आए हैं, तो लेकिन इन गीतों के साथ और भी कुछ हम शो में पेश करते हैं, वो है हमारा

0: परियोजना प्रस्तुति, आइए सुनते हैं परियोजना प्रस्तुति।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति में आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना के विषय में। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है। 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई ये योजना वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ा विस्तार है। 70 या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना 5 लाख का मुफ्त कवरेज दिया जाता है। इनके लिए अलग से आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस योजना को अपने राज्य में लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता कर लिया है, जिससे वहां के 1.33 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। मरीज को अस्पताल में भर्ती होने पर एक भी पैसा नकद नहीं देना पड़ता। निजी इंश्योरेंस की तरह इनमें कोई वेंटिंग पीरियड नहीं होता। पुरानी बीमारियां पहले दिन से कवर होती है और भी तो और, भर्ती होने से 3 दिन पहले तक की जांच और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक की दवाइयां इस पैकेज में शामिल है। इस योजना के तहत लगभग 1961 मेडिकल और सर्जिकल प्रक्रियाएं कवर की जाती हैं। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी का इलाज जैसे कैंसरों का इलाज भी किया जाता है। हृदय रोग में बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर लगाना भी इसके तहत है। किडनी डायलिसिस में और ट्रांसप्लांट में भी ये कारगर है। घुटने और कूल्हे का प्रत्यारोपण और मोतियाबिंद की सर्जरी और अन्य गंभीर बीमारियों में भी ये कारगर है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। आप अपनी पात्रता जांचने और आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें या आधिकारिक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पोर्टल पर जाकर MI एलिजिबल पर क्लिक करें। आधार से सत्यापन, अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दर्ज कर OTP के जरिए पात्रता चेक करें। यदि आधार और राशन कार्ड के विवरण में अंतर होने के कारण आपका कार्ड नहीं बन पा रहा है तो सरकार ने इसके लिए बेनिफिशियरी डेटाबेस मैनेजमेंट पोर्टल यानी कि BDP लॉन्च किया है। आप नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC जाकर इसे ठीक करवा सकते हैं। किसी भी सहायता या अस्पताल की सूची जानने के लिए आप 14555 या 14477 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप इस योजना के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो सरकारी आधिकारिक वेबसाइट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पोर्टल पर जाकर आप इसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक।

0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। किशोर कुमार जो कि जिनकी बात जितनी भी की जाए कम है, भारतीय संगीत जगत के एक ऐसे इकलौते फनकार जिनकी आवाज में जितना अलहड़पन और मस्तानगी थी उतनी ही गहराई, ठहराव और रूहानियत भी थी। दोस्तों, किशोरदा ने संगीत की कोई औपचारिक शास्त्रीय शिक्षा तो नहीं ली थी, लेकिन उनके बावजूद उन्होंने आवाज का बेस बेहद दमदार था। आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, बहुत ही अच्छी फिल्म आपकी कसम से, जिसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और आड़ी बर्मन साहब ने संगीत दिया था। वैसे स्टूडियो के घड़ी में 5:51 हो चुके हैं, गीतों का यह सिलसिला जारी है। रिंकू के साथ आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड में चाय और क्लासिक कसो। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म गोरा और काला से ये गीत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वैसे स्टूडियो की घड़ी में हमारे 5:56 हो चुके हैं। इसके बाद हम खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों ने

0: नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और साझेदार देशों के 2000 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स व्यापार मंच है।
1: मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द वर्ल्ड।
2: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप्स और उद्यम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स।

0: 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर।

यहाँ दोस्तों ना दुनिया का डर हो ना जमाने की कोई पाबंदी, चाहत के उसी आशियाने में बस हमारी तुम्हारी और रजामंदी के साथ ये वक्त भी यूं ही कटता जाए। शैलेंद्र सिंह लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बॉबी से। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। स्टूडियो की घड़ी में 6:18 हो चुके हैं और सुन लेते हैं हम एक गीत उसके साथ लता मंगेशकर और मनहार की आवाज में।

हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ब्लैकमेल से ये गीत। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 6:26 हो चुके हैं और ना चाहते हुए भी जाने का वक्त आ चुका है। तो दोस्तों, छोड़े जा रही हूँ आपके लिए ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। सुनते रहिए और रिंकू को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Subodh Mishra.
1: Namaskar shrotao, karobari khabron ke sath Market Mantra hazir hai. आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्ते.

0: वो अभी सचमुच इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत तो है, लेकिन अर्थव्यवस्था और अगर हम देखें पूरी आर्थिकी पर गौर करें तो जो ब्रिक्स के देश हैं वो पूरी दुनिया में जो ब्रिक्स के बाहर के देश हैं उनके मुकाबले किन क्षेत्रों में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हैं?
1: देखिए, एक तो जैसे स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब आप इन्हीं फिगर्स में जो प्रधानमंत्री जी ने दी है उसमें एक फिगर है इंटरनेशनल ट्रेड का 25%, तो यहाँ तो बहुत स्कोप है। प्रधानमंत्री जी और हमारे विदेश मंत्री जी और हमारे यहाँ एक फोकस पॉइंट ये भी है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं अभी भी संसार में, जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटाने की ज़रूरत है। इसलिए भी ज़रूरत है ताकि हम अपना ट्रेड और बढ़ा पाएँ। हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं एमर्जिंग इकोनॉमीज़ के, ब्रिक्स नेशंस के, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं तो उनको किसी तरह की नॉन टैरिफ बैरियर नहीं होना चाहिए। एक जो अब देखिए एक माहौल सा बना हुआ है जहाँ टैरिफ जो है, टैरिफ का वेपनाइजेशन होता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं है। और ये बिल्कुल सही एम्फेसाइज किया जा रहा है कि ब्रिक्स नेशंस ने बहुत अच्छा काम किया है इकोनॉमीज में, बट स्केल अप तो करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो है दौर चलता रहेगा डिस्पाइट द चैलेंजेस, बिकॉज रेजिलियंस की बात भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।
2: द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF हैज डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ की इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ आफ्टर द कंट्रीज इकोनॉमी एक्सपेंडेड 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल। द स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस वॉज ड्रिवन बाय सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स इवन एज द इकोनॉमी फेस्ड एन एनर्जी प्राइस शॉक, सेड जूली कोचैक, डायरेक्टर ऑफ द IMF's कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट। सो येट अनदर यू नो वैलिडेशन कमिंग इन दिस टाइम फ्रॉम द IMF दैट यू नो द economy has grown despite all the factors that talked about earlier, that despite all the factors that are happening right now, the things that are happening right now, India's economy is still expanding, you know, expanded by 7.8%. And as the IMF official said, that basically driven by services and exports. How do you see that?
1: Well, it shows, it underlines the resilience that the Indian economy showed up when it comes to dealing with the global headwinds. And you have sometime global headwinds converting into global storm, like what happened yesterday. The tension in the Middle East escalated and challenging the energy security. So under these circumstances, if you are able to grow at a pace at which we are growing, this definitely shows the resilience, inherent resilience of our economy.
2: And before we move forward, let's listen into what the Prime Minister said during the Business Forum meeting today.
3: Economic strength duniya ki tulna mein kareeb 2 guni raftaar se badi hai. BRICS desh global innovation aur solutions ke liye mahatvapurna centers bhi ban rahe hain. Grassroots se lekar frontier technologies tak हमारे देशों में इनोवेशन की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। ब्रिक्स की बढ़ती स्केल, स्पीड और ऑप्टिमिज्म हमारे बीच साफ दिखाई दे रही है। भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है।
2: Earlier today, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships. Dr. Jaishankar was addressing the BRICS Business Forum in New Delhi this morning ahead of the two-day 18th BRICS Summit beginning tomorrow. He noted that digital public infrastructure, artificial intelligence, fintech and advanced manufacturing offer major opportunities, but also raise questions relating to access, standards, security and trust.
4: Today's forum brings together a much wider set of enterprises and sectors and provides a space to examine not only commercial opportunities but also the conditions that enable them. This wider canvas is reflected in the forum's agenda. Supply chain connectivity and trade facilitation have emerged to be crucial, but so do building robust services, agriculture,

0: Agriculture and agri-technology, digital delivery, MSMEs, startups, and women-led enterprises.
1: Addressing the opening session of the forum, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called upon BRICS nations to work together to translate their economic strengths into jobs, wealth, and prosperity for their people.
2: Friends, BRICS today represents almost one-fourth of global trade, and India is an important pillar of the intra-BRICS trade. Engineering goods and electronics account for the largest segment of India's manufactured export. India is also known as the pharmacy of the world. We see BRICS as an important market for these and other products that India seeks to take to the world as a trusted partner.
3: Ji. प्रकाश जी, अभी हमने बातें सुनी डॉक्टर एस जयशंकर की और पीयूष गोयल जी की. जैसा कि अभी हमारे एस जयशंकर जी ने कहा कि भारत को दृढ़ता अभी दिखानी होगी हमें, एक्चुअली हर देश को दिखानी होगी ब्रिक्स में. और उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है जो संवहनीयता पर, सस्टेनेबिलिटी पर. और इसके अलावा अगर हम देखें आगे जो पीयूष गोयल जी ने कहा है, तो ये बातें अभी कुल मिलाकर क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में ब्रिक्स देशों को एक नई दिशा में ले जाने का काम करेंगी?
4: देखिए जी, दोनों मंत्री महोदय की बात को अगर मिला दिया जाए तो रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी के अलावा पीयूष गोयल जी ने बड़ी अहम बात ये की है कि मार्केट जो है विद इन द ब्रिक्स, जहाँ 40% जीडीपी है, विद इन द ब्रिक्स अगर हम मार्केट्स और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं और ज़्यादा एक्सेस दें एक दूसरे को, तो देर इज समथिंग कॉल्ड लुकिंग बियॉन्ड अमेरिका, लुकिंग बियॉन्ड वेस्टर्न वर्ल्ड. वो जो है ना फर्दर, बिकॉज देन अगर आपको डाइवर्सिफाई तो करना होगा, और हेयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई आप विद इन ब्रिक्स में ट्रेड को बढ़ाइए, एक्सेस दीजिए एक दूसरे को, कंट्री टू कंट्री करेंसी का वो यूज़ कीजिए एक दूसरे का.
1: Yeah, that is exactly the point I want to make, you know, Mr. Chawla, because Piyush Goyal did say, the minister did, you know, he called upon the BRICS members to, you know, link the India's payment systems to their systems, as well as he urged the countries to trade in each other's local currencies, make digital trade global, and build together for the future emerging technologies. How important is this, especially this emphasis on, you know, strengthening the digital payment system of the various countries and linking it? Because there's always been this talk of de-dollarization has been, you know, one of the things in BRICS.
4: Well, the talk of de-dollarization offends a few people.
1: Yes.
4: Few countries in the world. So without that, without de-dollarization, because that could be an issue, without that, the country to country trade,
1: yes,
4: in local currency is very important step, as suggested by Mr. Piyush Goyal, and that I think we expect a way forward, some movement,
1: right,
4: during this summit.
1: Right.
3: जी. और ब्रिक्स देशों ने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं सहित एक तरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है. सदस्य देशों ने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अनुरूप नहीं है. उन्होंने WTO को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति समर्थन दोहराया. भारत की अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई. मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, व्यापार में बिखराव, संरक्षणवाद, नीतिगत अनिश्चितता, राजकोषीय और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, बढ़ते कर्ज और वित्तीय जोखिमों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियाँ बनी हुई हैं. प्रकाश जी, हम वित्त मंत्रियों की बात भी हमने सुनी जो कल बात हुई है, और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स ने भी कहा है, और सबने वही जो आप पहले कह रहे थे, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था होनी चाहिए. आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे?
4: नहीं, बहुत सही बात है. बहुत बड़ी चिंता है कि जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको एक खतरा हो रखा है आजकल में, जब टैरिफ को हमने एक तरह वेपन बना दिया है काफ़ी मुल्कों ने, और ख़ासतौर पे खास एक देश ने अपना वेपन बना लिया है, और वो वेपनाइजेशन जो टैरिफ को आप करते हैं तो पूरे संसार में

0: उसका असर पड़ता है और मल्टीलेटरिज्म के फ्यूचर पे भी सवाल खड़ा होता है। इसलिए ये जो चिंता जाहिर की गई है ये बड़ी ही वाजिब चिंता है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है
1: जी। और चलिए अब नज़र डालते हैं हम अब आज शेयर बाजारों का क्या हाल रहा। देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 121 अंक गिरकर 74,782 पर बंद हुआ। निफ्टी

0: आज कारोबार की शुरुआत में सूचकांक काफ़ी गिरावट के साथ खुले थे। कच्चे तेल की तेज़ कीमतों और निवेशकों की सावधानी का असर बाजार पर दिखाई दिया। आखिरी घंटे में सूचकांक अपने निचले स्तर से थोड़ा ऊपर तो आए, लेकिन नुकसान में ही बंद हुए।
1: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 121 points to close at 74,782. The Nifty dropped 80 points to settle at 23,398. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index declined 0.3% and the Small-Cap 100 index dipped 0.6%. Earlier, the markets opened with a gap down and traded with losses, weighed down by elevated crude oil prices and cautious investor sentiment. However, the indices spared initial losses during the final hour, supported by value buying and decline in oil prices.
0: और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे। सबसे ज़्यादा गिरावट वाले शेयरों पर नज़र डालें, टाटा स्टील में 1.7%, रिलायंस में 1.3% और सन फार्मा में 1.2% की गिरावट रही। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में HDFC बैंक में 2%, टेक महिंद्रा में 1.4% और HCL टेक में 0.8% से अधिक की बढ़त देखी गई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 20 out of 28 sectors edged downward. Among the underperformers, Realty lost 2.7%, Metal dropped 2.4% and Commodities fell 1.6%. In contrast, Telecommunication advanced 1%, Private Banks gained 0.5% and IT added 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,471 companies declined, shares of 1,854 companies advanced, while shares of 234 companies remained unchanged.
0: जी प्रकाश जी, बाजार का हाल हमने बता दिया। शुरू में आज काफी गिरावट थी, थोड़ा बीच में लगभग फ्लैट होने की हालत तक फिर बढ़ा था, लेकिन अंत में फिर 121 अंक सेंसेक्स गिरा है और निफ्टी भी 80 अंक नीचे आ गया है। इसको देखें और इसके साथ पूरे पूंजी बाजार को अगर हम देखें, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बॉन्ड मार्केट की क्या हालत है पूरी दुनिया में, और जिस तरह से जो पैसे का मूवमेंट है किन बाजारों से निकल रहा है और कहां जा रहा है, जापान अपने पैसे वापस ले रहा है, क्या इन सब का एक सस्टेन्ड असर अब दुनिया के बाजारों पर दिखाई देना शुरू होगा?
2: नहीं, पूरी पूरे बाजार में पहले आज की बात करते हैं।
0: जी आज,
2: आज
0: जी।
2: सुबह तो बुरा हाल था
0: जी,
2: फिर रिकवरी आई, बड़ी अच्छी रिकवरी आई। अब रिकवरी जो आई वो इस तरह से नहीं आई कि जैसे संकट दूर हो गया। रिकवरी इसको ट्रेड पार्लेंस में, टेक्निकल ट्रेड्स में शॉर्ट कवरिंग हुई। लोग जब पैनिक हुआ सुबह तो ट्रेडर्स ने शॉर्ट सेलिंग काफ़ी धड़ल्ले से की। जब धड़ल्ले से शॉर्ट सेलिंग हुई तो शॉर्ट सेलिंग के अपने रिस्क होते हैं, उसको कवर करने की कोशिश की गई, इसलिए स्मार्ट रिकवरी आई। और ये एक ट्रेड काइंड ऑफ है वो है, लेकिन इससे ये नहीं कि दुनिया की चिंता दूर हो गई।
0: ये दैनिक, ये तो आज का था,
2: आज का था। अब हम बात करते हैं कि ये कारण क्या है, कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण जो लेटेस्ट था कि जो मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल है और बदतर हो गई। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दिक्कत थी, अब रेड सी में दिक्कत होने लगी। तब दोनों चैनल आपके ट्रेड बंद हो जाएगा, शिपिंग रूट्स बंद आएंगे, और जाहिर बात है उसका असर हमको तेल की मार्केट में मिला। क्रूड ऑयल जो 110 तक पहुंचा, फिर वापस रिकवरी हुई, तो ये उतनी उथल पुथल में मार्केट का इन्वेस्टर नर्वस हो जाता है। तो अब आपने कहा कि कारण क्या है, एक कारण तो मिडल ईस्ट है, दूसरा कारण आपने कहा बॉन्ड यील्ड का। अब बॉन्ड यील्ड जो है एक अपने आप में जेम्स बॉन्ड बन गया है तो वो एक अपने आप में एक खतरा है। वो क्या दर्शाता है बॉन्ड यील्ड्स का, मतलब आम आदमी की भाषा में बोला जाए ये दर्शाता है बॉन्ड यील्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका में तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है, ये दर्शाता है आम भाषा में कि इन्फ्लेशन का जो डर है लार्जली अराइजिंग आउट ऑफ द मिडल ईस्ट प्रॉब्लम एंड और बाकी चीज़ों से, इन्फ्लेशन का जो खतरा है बड़ा मंडरा रहा है पूरे वर्ल्ड पे, और उसके कारण मिडल ईस्ट भी है, उसका कारण पूरे जो संसार में खासतौर पर अमेरिका में जो उनका डेट है, उनका उधार है $40 trillion, वो अनसस्टेनेबल कोशिश की जा रही है। वहाँ के जो फाइनेंस मंत्री हैं, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मैं इसकी फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग कर पाऊँगा, लेकिन री इंजीनियरिंग जो है वो एक बैंडेड होती है, उससे काम नहीं चलता
1: जी।
0: लेकिन क्या आने वाले समय में हम पूंजी बाजार में एक रीबैलेंसिंग देखें?

0: रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, जो जो मैंने आपको समझाया, तो जो कैपिटल तो वहीं जाता है जहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, जब कमाई ज़्यादा होती है। तो इक्विटी मार्केट में रिस्क होता है, बॉन्ड यील्ड में आपको फिक्स इनकम मिलती है। आपको अगर अमेरिका में 5-5.5% मिल जाता है, 5% मिल जाता है, और देन अगर आपके एमर्जिंग इकोनॉमीज में थोड़ी दिक्कत होती है कि उसमें करेंसी डेप्रिसिएशन का या करेंसी फ्लक्चुएशन का फैक्टर इन करना पड़ता है, तो सेफ्टी की तरफ कैपिटल पूंजी घूम जाती है, और वो जो है उसका असर जो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट में इतना अच्छा नहीं पड़ता
1: जी। और देखें रुपए का हाल, अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 10 पैसे गिरकर 95.55 रुपए पर बंद हुआ। और अनुभव, हमारे पास एशिया और यूरोप के बाजारों की भी खबरें हैं। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आज लगभग 1.8% की गिरावट आई, जबकि जापान का निक्केई 1.9% से ज़्यादा गिरा। यूरोपीय बाजारों में ताज़ा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.6% ऊपर था, जर्मनी का डैक्स 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। यूके का रियल जीडीपी जुलाई में 0.4% बढ़ा, जबकि जून में ये 0.3% बढ़ा था।
2: Let's move on to the US markets. Major US indices ended lower for the fourth consecutive session yesterday with elevated bond yields and crude oil prices weighing on investor sentiment. The Nasdaq composite declined more than 0.6% and the Dow Jones Industrial Average as well as the S&P 500 fell 0.6%. On the economic front, the producer price index PPI for final demand rose 0.4% in August, following a 0.1% increase in July. According to the latest release data released by the U.S. Bureau of Labor Statistics, PPI increased 5.4% last month on an annual basis, up from 4.8% in July. Mr. Chawla, we see that, you know, the PPI for the month of August in US has risen to 0.4%. Now, there is a very important meeting which is going to happen, US Fed meeting happening next week on the 15th and 16th September. What are your expectations given the fact that the PPI has risen, given the fact that international crude oil prices are have, you know, gone beyond $100 per barrel? What is the expectation? Is the chairman, Kevin Warsh, and his cohorts going to go in for a hike, start the hike rate hike cycle, or are they going to stay put and, you know, hold the rates?
0: Well, the chances of our rate hikes are have gone up.
2: Okay.
0: And the latest inflation numbers of the US, both CPI and the PPI. PPI means the wholesale
2: price. Yes, CPI is expected later
0: consumer
2: tonight.
0: Yeah. I think it's a come yeah. about. So what has happened is, anyways, the inflation specter of inflation is very, very much there, and Fed has not much choice left now. They don't have much choice left.
2: Okay.
0: And the rate hike is given. The question is 1, 2, 3, 4. How many rate hikes are there?
2: And because also the question is when.
0: Well, not in too far distant. For a common man point of view, when you say rate hikes, Fed rate hikes, bond yields, it means the mortgage rates,
2: yes,
0: the credit card rates, the interest rates for American consumers are going to shoot up. The cost of living crisis might be there. People are already feeling the pressure.
2: Yes.
0: So these things are, and mind you, economists and the experts also point that these high interest rate regime is not a short term phenomena, mind you.
2: Okay.
0: It's going, we are in for a long haul. So the countries must buckle up. They must prepare themselves for a scenario where interest rates continue to remain high. The party time is over.
1: वैसे भी नैस्डेक को लेकर तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अब बुल रन खत्म हुआ
2: जी। Let's move on to commodities. Global crude oil prices
1: fell today. पहले मुझे लगता है क्रूड के संबंध में अभी और भी काफी कुछ खबरें हैं अनुभव, जो प्रकाश जी से हमें चर्चा करनी चाहिए कि अभी जैसा कह रहे थे हम, पूरी दुनिया के बाजारों पर असर डालने वाला एक सबसे बड़ा कारक ये है कि सप्लाईज, हमारे क्रूड की सप्लाई कैसे होगी, कहां से होगी, रास्ते बंद होते जा रहे हैं। और आईईए ने जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है

0: उसमें यह भी है कि कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति में रोजाना 57 लाख बैरल की गिरावट आने की आशंका है। मतलब इससे फिर अब डेली जो सप्लाई है वो 10 करोड़ 7 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगा वो डेली सप्लाई।
1: IEA ने तो एक अपनी रिपोर्ट जारी किया, नंबर्स दिया है, बट ये जो आशंका है ये कोई इसलिए कोई अंग्रेजी बोलते हैं नो ब्रेनर
2: जी,
1: तो नो ब्रेनर है जब ऐसे
0: दिखाई दे ही रहा है
1: तो वो उन्होंने देख नंबर देके आपको स्टैंप लगा दिया, तो वो तो एक है, गिवन है। तो अब इसमें इसके फिर सवाल ये है कि ये सिचुएशन ऐसी थी कि वार जो है जब अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए वार को मिडल ईस्ट में, उधर से यूक्रेन रशिया को जो है उसमें भी ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रही है, तो ऐसी शंका जताई जा रही है और ऐसा डर है और ऐसा वो है कि भाई आर वी इन ए सिचुएशन कि भाई जहाँ पे अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर एवर वॉर
2: जी,
1: जब ऐसी सिचुएशन में तो मुल्कों को अपने अपने देशों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रिपेयर्डनेस की जाए, स्ट्रेटजिक रिजर्व्स बनाए जाएं, क्लीन फ्यूल की तरफ, हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ के लिए आ जाए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट।
0: इसके साथ साथ ये अनुमान भी है कि इस साल वैश्विक तेल की मांग में 25 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट भी आएगी, जो कि पहले के 16 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट के पूर्वानुमान से थोड़ी ज़्यादा है। तो अब दोनों श्रिंक होने की बात हो रही है कि शायद मांग में भी गिरावट अब
1: उसका मुझे अंदेशा है क्योंकि डिमांड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई रिसेशन आ रहा है, उसका मुझे थोड़ा अंदेशा है
2: जी। एंड लेट्स गेट बैक टू द कमोडिटी प्राइसेस। लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल टुडे। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.2% डाउन एट $104.15 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.2% डाउन एट $99.17 पर बैरल।
0: और भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.9% गिरकर 1,51,938 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 2% की गिरावट के साथ 2,28,920 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। आज अनुभव वक्त इतना ही है, खबरें तो और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन अब चलते हैं प्रकाश जी कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस लीडर्स सेशन ऑफ ब्रिक्स बिजनेस फोरम, सेज ब्रिक्स नेशंस आर इमर्जिंग एज की हब्स फॉर ग्लोबल इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स 121 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,400 एंड ग्लोबल ऑयल सप्लाई एंड डिमांड टू फर्दर कॉन्ट्रैक्ट दिस ईयर, सेज International Energy Agency. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
5: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। उन्होंने मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्केल फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में

0: विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच वार्ता हो रही है। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2-3 दिन तक बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that BRICS nations are emerging as important centres of global innovation and solutions. Addressing the leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi this evening, Mr. Modi said, today, BRICS nations represent 50% of the world's population, 40% of its GDP and over 25% of the global trade.
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: The Prime Minister said amid global uncertainties, India today offers a source of confidence for growth and stability. He called for Make in India, Innovate with India and Scale for the World. In his address, Union Minister of

0: सागर की मुद्दों पर भी विचार वाद अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रधान मिलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में दोनों देशों के बीच सहयोग और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी वार्ता की। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता संयुक्त का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। यमन में हौसी विद्रोही रणनीतिक बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहे हैं। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार हौसी विद्रोही जलडमरू मध्य के पास स्थित तटीय शहर धुबाब और रणनीतिक पेरम द्वीप तक पहुंच गए हैं। ये घटनाक्रम हौसी विद्रोहियों के लाल सागर स्थित मोखा बंदरगाह पर कब्जे की खबरों के बाद सामने आया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। वहीं जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that BRICS nations are emerging as important centers of global innovation and solutions. Addressing the leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi this evening, Mr. Modi said, today BRICS nations represent 50% of the world's population, 40% of its GDP and over 25% of global trade.
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है।
1: The Prime Minister called for Make in India, Innovate with India and Scale for the World. He said at a time when trade barriers are rising across the world, India is building economic bridges. Mr. Modi said global trade can move forward only when sea lanes are secure, supply routes remain open and seafarers are safe. In his address, Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal said that during India's chairship, BRICS has been driven by a clear purpose To achieve more balanced trade amongst member nations and to explore expansion of trade and services across the bloc. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin held bilateral talks at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. Both the leaders reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains. During the talks, the two leaders agreed to remain engaged in an effort to strengthen further the special and privileged strategic partnership between the two countries. Prime Minister Modi once again

0: গানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM Gold, 100.1 FM Gold, FM Gold.
1: চলে যাব, ফোনে কে আছেন দেখবো। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো, না কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে, যিনি করছেন তিনি মনে হয় বারবার করছেন, আমরা শুনছি মানে আমরা আছি কিন্তু আপনার কথাতে, আর আপনারা আপনাদের মতামত দিচ্ছেন। আজকের আপনার কথার বিষয়, চালাকি ছাড়া জীবন বৃথা, এর পক্ষে অথবা বিপক্ষে।
2: পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রচুর মেসেজ এসছে, প্রচুর হোয়াটসঅ্যাপ এসছে আমাদের কাছে, আমরা সমস্ত লোকজনের মেসেজ পড়ে ফেলেছি, হোয়াটসঅ্যাপও পড়ে ফেলেছি, এবং একটু দেখে নিই আমাদের ফেসবুকে আর নতুন করে কিছু এসেছে কিনা।
1: আমাদের 100.1 FM Gold কলকাতা এই ফেসবুক পেজে আজকের অনুষ্ঠানের পোস্টারের নিচের কমেন্ট সেকশনে আপনারা কিন্তু আপনাদের মতামত উজাড় করে দিয়েছেন। সময় এখনও যেহেতু কিছুটা ছিল, সেহেতু আমাদের খোঁজ এখনও চলছে, কিন্তু স্টুডিওর ঘড়ি বলছে চট করে যদি একটা
2: একটা মেসেজ আছে আগে দেখে নিই। মানসী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, অতিরিক্ত কিছুই ভালো না, তবে যেখানে যেমন সেখানে তেমন, বলে না ঝোপ বুঝে কোপ মার, সেটা হওয়াই ভালো।
1: লিসনার,
2: আর বোধহয় ফোন নেওয়ার সময় নেই আমাদের, আমরা আজকে ফোনে প্রচুর সময় দিয়ে ফেলেছি। সুস্মিতা আর মনীষা, তবু শেষ দিকে আমাদের যে লিসনার বারবার ফোন করছিলেন, তিনি হয়তো অনেকের লাইন ব্লক করে রেখেছিলেন। যাই হোক, আমরা আবার
1: এখনকার মতো বিদায়, 9:30
2: ফিরবো
1: অনুগল্পের আসর নিয়ে।
2: অনুগল্পের আসর শুনতে থাকুন 100.1 FM Gold।
3: নমস্কার, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी

अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति

0: और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरेश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तमिल भाषा की शास्त्रीय और कालजयी ज्ञान कृति तिरुकुलर का रूसी अनुवाद सौंपे जाने की सराहना की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोलिक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। उधर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।